बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएं दार। काया विच तोटा काया विच लाहा।

कुसंगत बह सदा दुख पावह दुखो दुख कमाया सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा उड़ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया काया सोध है शब्द विचार है।

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

लाख खरा शराशरयत लेकम्मा वहो त्रिकत तर्क खोज टोला वहो मारफत मन मारहो अब्दाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द

विरहाओ, कर अनुग्रहो आप राखियो, नह उपज पाओ बेकार, जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत ने संसार।

होई बहले पेख पवह दिन राती हों मैं रोग ना जाई पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेव है।

बाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग करता

कहाउ तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुरु

सतसंगत साई हर तेरी, जित हर कीर्त हर सुनने, जिन हर नाम सुनया मन पीना, तिन हम श्रे वह नित चरणे, जग जीवन हर ध्याए तरणे, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाही जिहवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

पंजवां कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम जो सिमरै

पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचय नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

हम सोते। प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो भावे त्यों करहे निबेरा, द्वितीया नासत एक।

अंत अपूछे, राज हमारा सद ही निःचल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमारी

गुरमत खोज परे तब पकरे तन साब तरास उबरया। पाखंड भरम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु।

कूप गोज खिन काढ ज्यो ओडा कूप गोज खिन काढ त्यो सतगुर वस्त लहाइए। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए। जन्म पदार्थ

मेरा सतगुरु सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी घर आया बसंत महला पंजवां हिंडोल।

यहो मृतक मड़ा है शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसया। राम नाम गुर उदक चो आया फिर हरिया हो वारसया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजया।

निसबासर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

तिस अर्पौ सब सुख जाई। एक निमुख प्रैदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हों सगल त्यागों जो प्रै बात सुनाई। देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सत गुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दया।

एक नाम कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाव आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर भोकट गया।

पीर है हर बिन गुर शब्दी हर पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो हर सियो रहां समाई। ऐसी रवत रवहो मन मेरे हर चरणी चित लाई विषम भय गुण गाए मनोहर निर्भव सहज समाई।

केलविख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कोट अंतर के पाप विनाशन हर साचा मन पाया

सहज तुन उपजै मन साचै निबलाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाण शब्द मरै तां सब किछ सूजै अन दिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों। आन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जोग जोग।

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले।

मन बिगसै हौ तिन कह सद बल जांत ज्ञानी हर बोलह दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है।

साध पाई वड भागी संग साधु पार पया मेरा मन अन दिन आनंद पया गुर प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पहो गया रहा।

अनक बार ब्रह्म है बहुजोनी, एक न काहूं धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन पौ चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघ है कत सागर, कागर नाव लंघ है कत सागर, वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते, काल

अनुकंप है, आप उदाहरण आयो रहाओ, दर्शन भेट होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, काटे रोग भय मन निर्मल, हर हर औख दिखायो, अस्थित भय बसे सुखथाना, बहोर ना कतहुं ता।

पदते उदाहरण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरनाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

हर गुण निदे सुख मोर, ईत ऊत राम पूरन निरखत रिदखोर, संत शरण तरन नानक बिनस्यो दुख कोर।

सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निध बस है जिस सदा कर। पर त्रै रावण जाहे से ताला जी है नित प्रत हिर है पर दर्ब शिदर कत ढाकी है।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजा

रवै सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने। सुखदेव प्रीक्षित गुण रवै गौतम।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ।

पुन दुख नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो विमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

जिनकै मन मह भरम तिनके दिते नानका ते हो जेहा धर्म अभय निरंजन परम पद ताका पीख कहोए।

जंगम सर्प है जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल होए।

द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सच्यार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावे।

वेदं गुरमुख रया समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा इक देव जाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा, विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सु

तोखा प्रख्या जिन सूत जे को बुझे होवे सत्यार तबले ऊपर के ताभार तरती होर परे होर तिस्ते पारतले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दाप जाने कौन कूट कीता पसाओ एको कवाओ सिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद वावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख पगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पखाहे असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहें सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर

को थाओ कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तू दुभावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पर ये हाथ पैर तन देहे पानी तो तै उतरसते मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आ

मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरत मल नाव सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन खिच कवन वार कवन सिरुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण चित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सा

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती मालकान कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

ने साचा सोए जे को आखे बोल विगार ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा के तेवा मनहारे केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे गावे तोनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा तर्म द्वारे गावे चित गुपत लिख जाने लिख लिख तर्म विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदानाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अर्थक तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे धारे से तुदनो गावे जो तुद भावन रस्ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चित ना आवन।

सी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान इक संसारी इक पंडारी इक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस इक दूजी दो लख होए लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े थीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा पै जाए तरम खंड का एहो तरम ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिये रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिये बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिये सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिये सुरा सिदा की सुद्ध कर्म

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगी आईया बुरे आईया, वाचे तर्म हदूर, तर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, सोदर राग आ

सारे गावन सुधनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे गावन सुधनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम तेरे सदा सवारे गावन सुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुधनो साध विचारे गावन सुधनो जति सती संतोखी गावन सुधनो वीर करारे गावन सुधनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन सुधनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन सुधनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन सुधनो जोध महाबल सूरा गावन सुधनो खानी चारे गावन सुधनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करती फिर हुक्म न करना जाई सो पाता होता पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाऊ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वह काट न जाए

जेवड आप तेवड तेरी दात। जिन दिन कर कह कीती रात, खसम विसारे ते कम जात। नानक नामे बाजसनाथ, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम चीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुरमस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु पाए। ताका रिजक आ गए कर तरया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, तू के कास्त हरिया रहा। जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बतरे चरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अक्ष सिधान, ठाकुर कर कल करया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया।

का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक परें बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुझ आपे सिर्ष सब उपाय जी तुझ आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जन होई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं डासाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हौ पाई रहा सब तेरी तू सबनी प्याया जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुखला दा मनमुख गुआया सुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लागे पव जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन आस।

इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिन सुरहारे मन गुरु मिल काश सवारे रहाओ ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पा।

संग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चित ना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

चंद सूरज दोई गुफै न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुस्सा कटिया।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै साल वाइया, पढ़े के पुछन जाओ। बाबा माया रचना।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कछ नाम निवास, जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान। फिका बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान। तिन मत तिन पत तिन तन पले।

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण तिस विण सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्ला।

कमान सांग तेग बंद गुण तात वाजा ने जा पक्षों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़े तन पीड़िए मन में चले विकार रहाओ। कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद पावसी होर आ

विचार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

रहाओ। आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिध उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कणा पाना नाल कपूर। जे तन कंतना भावई ता सब अडंबर कूर, सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द ना पेदी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे छुट्टी है गुरमुख की ने आप तन मन गुर पहवेचिया मन दिया सिर नाल त्रिभुवन खोज कंडोलिया

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर

जम मार करे खुलहान, मन मुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुबान, ऐसे तंग पिटाइए।

मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परने पाए ना विजवे जो पवे दिशंतर देश अंतर मैल ना

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पौ जल पचै पचाए। ए मानक जियो निर्मूल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस मिले, से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौ जल लंघिए, दरगे पत परवान। नानक ते मुख

कैसी वस्त्र विसाहिए, जैसी निभ नाल अग्गै साव सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जाप ना पत है खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रखिया

पाने मन के शान हर हृदय जमाए ले क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल काल त्र माता तेरे हो है ना अंक सखाया रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे इन तज आपने होए त्याय जब तप संयम हो है जब राखे कमल बिकसे मद आश्रम आय बीस सप्ताह रो बासुरो संग रे तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीने कह नानक इव एक तारे।

तातु मुल्ला तातु काजी जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना परिये पाई सोई काजी जिन आप तजिया।

नाल पलक सौके सदा बयाल कूड़ सुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस

सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ पिया।

नानक नदरी पाई सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा। बहु पेश कर परमाई मन हृदय कपट कमाए, हर का मेल न पावे मर गुस्ता माए समाए। मन रे ग्रेही माए उदास, सच संजम करनी सो करे गुरमुख होए परगास। राव गुर के शब्द मन जीतिया, गत मुक्त करे में पाए। हर का नाम त्याए सत संगत मेल मिलाए। जे लख स्त्रियां पोग करे नवखंड राज कमाए। बिन सतगुरु सुख न पावे फिर जोनी पाए। हर हार कंठ जिनी तहरिया गुर चरणी चित लाए। तिना पिछे रिद सिर फिरे ऊना तिल ना तमाए। जो प्रभु पावे सोचिए अवर न करना जाए। जन नानक जीवे नाम ले हर देवो सहज सुवाए।

आए जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार लक्ष चौरासी परम दे परम परम होए खुआर पूरब लिखिया कमावना कोए न मेचन हार। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाए शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें

अंगिन पवित्र रतिया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंब का बिरस जाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा फिर होए ए जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम नचे कै लिवलाए पग छिसुए रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ न आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर से लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे।

गुरमुख सदा पट होए, हर हर सदा त्याए मलहों में कदे तोए रहा। मनमुख नाम न जाननी विन नावे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा, से विष्टा माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए। हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुरु पूछ करें वापार। हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार, गुरपुरे हर नाम।

आए अंदिन नाम ते आये सहजे नाम समाये अंदर रचे हर सत्स्यों रसना हर गुण गाए पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे अंदिन नाम ते आए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर ते आए गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर तातुर बाजी पलच रहे ना उरवार ना पार गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार गुरमुख सदा त्याय एक नाम कर

ऐनस भगत करे दिन राती, होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन ताव तां रहे जा आपे नदर करे पाई रे गुरमुखर नाम ते आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चान।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए।

प्रदान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किस करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी अवर न करना जाए मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार एनस हृदय रव रहे।

अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाई है, हो मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा।

आप गवाए। हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए। श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार, कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार। सतगुरु क्या फिटकिया।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांसी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा।

नाम ते आए विण कर्मा पाया ना जाए पूरे पाग सत्संगत लह सतगुर पेटे जिस आए अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राखिया उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे ले मिलाए अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिने आए विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआ

गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार, सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाय प्यार, कृपा करके अपनी दितोन भगत पंडार, मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाये हर स्यों रह समाए, रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए, जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए, गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए, संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए, एक अपने पाने कढ लयन आपे लेन मिलाए, आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए, आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए, सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए, एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए, गुरमती हर पाए।

मन मेरे सतगुर के पाणे चल, निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल रहाओ। अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर, मन मुख शब्द न जानी अवगुण सो प्रभ दूर। जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर, गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगन रंगियोन सबदे लयोन मिलाए, सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए। चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पा।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

होए। सच सलाही सच लगा सच्चे नाय तृप्त होए, गुण विचारी गुण संग्राहा अवगुण कड्डा तोए। आपे मेल मिलाएदा फिर भी छोड़ा ना होए, नानक गुरसाला।

तिना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार, तिनकी सेवा धर्म राय करे तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान, आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान, शब्द नाची ने कथनी बदनी करे बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोए, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए, नानक नाम समाल तू जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए, मल हो मैं तोती किवे ना उतरे जे सो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाव

गुर शरण आवे ता निर्मल होए। मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए। मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए। ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

को नहीं दर गुरु मुखा नो सावास बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवास कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास हौं तिस विट्टो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास। मेरे प्रीतमा हौं जीवा नाम ते आए बिन नामे जीवन ना थी है मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे प्रगास तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरु पास। जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ से पागहीन बस काल ओए फिर जोन पवाईए विच विस्ता कर विकराल ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए गुरमुख सज्जन गुण कारिया मेरे सज्जन।

दावा त्रिपत मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हौ सतगुर के बल जाओ बिन सतगुर हर नाम न लब्बे लख कोटि कर्म कमाओ। बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास। बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा हौ।

ने आए। सतगुरु वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, सेवड पागी वड जानिए, जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वन तिन सबत है, पागहीन नहीं खाए, बिन सतगुरु पल्ले ना पवे, मन मुख रहे बिल लाए। ओए सतगुरु आ गए नानिवे, ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे, रैन सवाई जाए, आव कटे नर न बुझे, नित मूसा लाज चुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचे पचाए। पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई न होए। रहाओ गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे शरणाए। ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दर गए मनिए, हर आप ले गल लाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए। अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चे शोभा पाए। जिनी गुरमुख नाम सलाया, तिना सबको कहे सवा।

रस भोगें खुशियां करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अफार करता चितना आवई मनमुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसाद।

आओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अखाक किसी चित न पावही।

शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप बुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राग महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहिया विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरंबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लेन लगा कित कु पकड़े।

हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है सब मिथ्या मोह।

सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बां पकड़ गुर काढ़े।

अपना आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर न कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सह हो मैं ताप नानक।

जियो पिंड सब तिस्कार, जो तिस पावे सो होए, गुरपूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा, जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए।

काल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रव रहे आप।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान स्नान, काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुख उजने साचे के गुण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोई रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार। बालक बिरद ना जानिए ने चल तिस दरबार। जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार। जिस पे खत किल विखिरे मन तन होवे शांत। एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत। गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात। सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिये एह जिंद। देखे सुने हदूर सद

मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला करथा पिया अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिए अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज कित न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

अठसठ तीरथ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल। सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार। करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार। रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार। तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर। थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान। सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट। संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू। सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल। जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत। चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ। सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ। चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ। कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ। मेरे मन हर पज सदा एक रंग। कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग। रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद। जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद। संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद। जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद। अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान। रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान। दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान। जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान। मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार। दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार। पूला मार्ग पायुन गुण अवगुण ना विचार। नानक तिस शरणागति जे सगल कटा आधार। श्री राग महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास। बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम कर

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभलोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंकड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेय रणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधार है, पाप सगले जाहे, हौं तिनकै बलिहारण जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसै साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिस है सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

हुक्म न जापी केतड़ा लिख न जाने कोए जे सौ शायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए पीर पैकाम सालक साधक सौदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वेले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे सबना वेखे नजर कर जय पावे तें दे थावा नाम ना जानी है नावा केवड़ नाओ जिथे वसे मेरा पाप साओ सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई ना सकई हो किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड्डा करे वड्डे हाथ वड्डे आईया जय पावे तै दे हुक्म सवारे आपने चसा ना तिल करे सबको आखे बहुत बहुत लैने कै विचार केवड़ दाता आखे

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लहें सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंतन

आपे गुण आपे कथे आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मन महत तू आपे देवनहार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावे त्यों राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना कट कट डीठ अडीठ आपे सागर बोहे था आपे पार अपार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार अस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए हर जियो शब्द पछाणिए सांच रते गुरवाक तितन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।